0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
2: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
3: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
4: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
5: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
6: गड्डी तो ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
7: सोना चाहिदा,
8: भरोसा चाहिदा,
7: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
9: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
10: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
9: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। आज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: विश्व पद्धर ते तेल दी घाट सानू सब नू प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी घट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वालों जारी।
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford। मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au। Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
7: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी पहन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
7: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433
4: 8883311 or visit uvfinancial.com.au.
8: ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੀਂਦ ਲਓ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। TSC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣੇ।
9: ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੈ?
10: ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ PR ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, AAT ਅਪੀਲਸ, ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, PR, US ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
9: ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
10: ਹਾਂਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406-660-960 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ .com.au।
11: JBCO Films leke aaye ne action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
12: 5 saal baad mudiya Shera, te mudiya vi kede haalat ch?
13: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
14: Main utthon vi mud ke aaya jithon koi nahi mud ke aaya.
11: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
13: Hun vekhna na bhullo 15 mai to tuhade nedle cinema ghara vich Shera.
15: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
16: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
17: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tyrefors.com.au।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
0: किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी। करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
5: हाँ जी रेडियो।
0: की होया, इन्नी टेंशन क्यों लेती हुई है
6: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी भैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
6: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
7: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
8: सूरज देवता
7: की मतलब?
8: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
7: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
8: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
9: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
9: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
10: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: पांडे जी क्या तू खाना लग पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: की तुसी अपने बिजली दे बिल कटाना चाहते हो? विक्टोरियन एनर्जी अपग्रेड नाल हुणे सही मदद प्राप्त करो, कुशल उपकरण ते बचत करो, जिवें कि इलैक्ट्रिक एयर कंडीशनर लगाउण दे खर्चे विच $1610 तक अते सालाना बिजली बिलां विच $460 तक दी बचत। energy.vic.gov.au ते जाओ। बचत सिर्फ अंदाजे मुताबिक है, योग्यता दीआं शर्तां लागू हुंदीआं हन। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
4: जे तुसीं बीमार हो तां AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
4: विश्व पद्धर ते तेल दी घाट सानू सब नू प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी घट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां, किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वालों जारी।
0: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: कहानी धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स चांद मेरा दिल। वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल कमिंग टू सिनेमाज ऑन मई 22nd।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
1: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 3-4-6-5-4-9-2। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकते हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45।
3: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
4: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
5: हाँ जी, हाँ जी, ओए

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिकलेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900। ईमेल sales@ozlintels.au।
3: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालत च।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
5: उन देखना ना भूलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
7: टेंशन निरी टेंशन।
8: की होया
7: एथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
8: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमीग्रेशन नु, जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
7: या 90-77-93
8: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
7: याद रखो 9077-9733।
8: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
7: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
2: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी पहन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
3: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
1: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

एक हुक्म जारी किया जाए। सुनवाई के दरमियान दिल्ली हाई कोर्ट ने वीरवार के दिन कहा कि सियासी आलोचना ते मानहानि के दरमियान एक बरीक लाइन होंदी है। खबरी अदारे पी उन्हां दे खिलाफ मनघड़ंत पोस्टां पाईया जा रही ने जो कि उन्हां दी साख नूं नुकसान पहुँचा रही ने। उन्होंने कोर्ट तो मांग की कि अजिहियां पोस्टां नूं हटाने दे लई एक हुक्म जारी किया जाए। सुनवाई के दरमियान दिल्ली हाई कोर्ट ने वीरवार के दिन कहा कि सियासी आलोचना ते मानहानि के दरमियान एक बरीक लाइन होंदी है। खबरी अदारे पीता है पर अखीर दे विच जदों तक किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी एक दायरे दे विच रहिंदी है तां उदों तक इस नूं आलोचना नूं नकारात्मक नहीं मन्निया जा सकदा। झारखंड की राजधानी रांची दे विच लंघी कल पाबंदी शुदा संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दे 27 मैंबरां ने पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिता। खबर एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सारिया ने झारखंड पुलिस झारखंड जैगुआर ते सीआरपीएफ के सीनियर अफसर की मौजूदगी हथियार सुटे ने। यह आत्म समर्पण झारखंड पुलिस के आपरेशन नवजीवन के तहत होया है। पुलिस अधिकारियों ने दसाया कि आत्म समर्पण करने वाले कई मामले जिहड़े ने पिछले दिनों के भी वापरे ने। उत्थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने वीरवार के दिन मंत्रीमंडल का विस्तार किया। अपनी कैबिनेट के उन्होंने 23 मंत्रियों को शामिल किया। इस कांग्रेस के भी दो मंत्री शामिल ने। पहली बार होया 1967 तो बाद के कांग्रेस को सरकार के जगह दी गई हो। कांग्रेस के एस राजेश कुमार ते पी विश्वनाथन नू मंत्री अहुदे की सहुं दी गई है जबकि डीएमके नू इस सूबे दे विच कांग्रेस दे नाल कदे भी कांग्रेस नूं डीएमके दे नाल कदे भी सरकार दे विच आउण दा मौका नहीं सी मिलिया। विजय दी कैबिनेट दे विच सब तो ज़्यादा मंत्री दलित भाईचारे दे नाल जुड़े ने। इस भाईचारे तो 7 मंत्री बनाए गए ने। हुण तमिलनाडु सरकार दे विच मंत्रियों की गिणती वध के 33 हो गई है। विजय दे मंत्रीमंडल दे विच वीसीके ते इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नूं भी थां दित्ती गई है। वीरवार दे दिन राजपाल आर बी आड़लेकर ने लोक भवन दे विच मंत्रियों नूं अहुदे दी सहुं चुकाई। आस्ट्रेलिया दीयां खबरां दी वी सांझ पांदे हो चलिए। आस्ट्रेलिया च सब तो पहला सियासत दे नाल जुड़ी खबर जिथे किसी भी देश दे लई कट्टड़ सियासतदान जां इस किस्म दे सियासतदान जिहड़े मनमनियां करदे होण ते सिर्फ उहनां नूं अपनी ही गल वाजब लगदी होवे अजिहे सियासतदान नुकसानदेह हो सकदे ने। उदाहरण के तौर दे उत्ते वन नेशन पार्टी दी नेता पॉलिन हैनसन जिन्हां ने एडीलेड दे विच बीते दिन ही शिरकत तां कीती एक ऑयल ते गैस कॉन्फ्रेंस दे दरमियान। पर इस तो बाद पत्रकारां दे नाल ना सिर्फ पॉलिन हैनसन बल्कि उन्हां दे स्टाफ दी तरफ तो भी जिस किस्म दा बर्ताव किया गया वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आस्ट्रेलिया दी सियासत च वक्री गल है कि आस्ट्रेलिया दे ज़्यादातर मीडिया दी तरफ तो इस मामले दे उत्ते चुप्पी ही वटी गई है। वन नेशन पार्टी दी नेता पॉलिन हैनसन ने तो अंग्रेजी दे विच नास्टी BITCH अखर वरत के पत्रकार नूं गाल भी कढ दित्ती। दस दिए कि यह टिप्पणी अजिहे समय च सामने आई जदों एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कल दे दिन की गई सी एडीलेड दे विच। सैनेटर हैनसन उत्थे ऑयल ते गैस प्रोड्यूसर इवेंट दे विच मौजूद सी। इवेंट तो बाद जिवें कुछ कु सवाल होए जिहड़े कि सैनेटर हैनसन दे लई थोड़े तिखे सी तां उहनां दी मीडिया एडवाइजर दी तरफ तों विच रल के विच आ के मामले नूं रोकिया गया ते कहा गया अंग्रेजी दे विच वी आर डन थैंक यू नहीं नहीं नहीं नो नो नो शट अप वी आर डन। ये गल कही गई सैनेटर हैनसन दे एडवाइजर रिचर्ड हैंडरसन दी तरफ तो मगरों जदों ही एक पत्रकार ने पुछया कि की तुसी सानू शट अप किया की तुसी सानू चुप हो जाण दे लई किया तो अजिहे दे विच सैनेटर हैनसन उत्थों तुरदे बने। नाल उहनां दे उस वक्त बानबी जॉयस भी सी। दस दिए कि वन नेशन पार्टी दे विच हुण एम पी शामिल होके आए ने बानबी जॉयस ते कैमरे दे उत्ते ए भी एक दूए नूं कहिंदे सुनाई दिते। बानबी जॉयस ने जदों वन नेशन पार्टी दी नेता पॉलिन हैनसन नूं कहा कि तू चंगा किता तुसी वधिया ढंग दे नाल सारी गलबात कीती। अजिहे च सैनेटर हैनसन ने पत्रकार दा नाम लैके कहा कि ओह एक नास्टी BITCH यानी अंग्रेजी दे विच एक गाल कढ़ी इह है। अजिहे तो बाद सिर्फ तिन्ने जाने हस पए जिस दे विच सैनेटर हैनसन दे मीडिया एडवाइजर हैंडरसन भी सी। उन्हां हैनसन ने ये भी गल कही कि की तुसी चाहते हो कि मैं दोबारा जाके उहदे मूँह दे उत्ते ये गल उहनूं कहां। इन्ना कह के ये तिन्ने हसदे होए बाहर निकल पे। दस दईए कि यह पहली बार तो नहीं होया जदों किसी भी मीडिया दी तरफ तो जदों तिखे सवाल पुछे जाते हो सैनेटर हैनसन या उन्हां दे स्टाफ

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
1: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिम्मी पहन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन।
3: की होया?
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
5: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवे?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेमन हॉल।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
6: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
7: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
0: किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
8: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
9: यार उना दा डैंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
8: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया है। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस, रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
10: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
11: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
10: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
12: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
4: सूरज देवता
12: की मतलब?
4: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
12: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
4: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरे दोस्त छुड़ाने चले हैं
0: और ये तीसरे दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: ACMI तुहाडा फिल्म टीवी अते वीडियो गेम्स दा म्यूजियम है जो कि फेड स्क्वायर ते रोजाना खुलता है। साड़ी मुफ्त द स्टोरी ऑफ द मूविंग इमेज ते जाओ, पर्दे ते पिछे दियां कहानियां देखो, बनाओ अते पड़चाल करो। 2 to 5 साल दी उमर दे बच्चियां लई प्ले स्कूल कम एंड प्ले नू ना भुलो। एक मुफ्त प्रदर्शनी जो ऐप पड़चाल करदी है कि प्ले स्कूल दा एक एपिसोड किवें बनाया जांदा है। साड़ी सिनेमा घरां विच एक फिल्म देखो, दुकान ब्राउज करो जां कैफे विच कॉफी लो। ACMI.net.au ते देखो की हो रहा है।
4: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने,
6: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
7: सूरज देवता
6: की मतलब?
7: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
6: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
7: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
8: टेंशन मेरी टेंशन
6: की होया,
8: ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੰਗੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
6: ਕਾਕਾ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ VY ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪਾਂਸਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ MRT ਜਾਂ RRT ਅਪੀਲਸ ਤੇ ਸਕਿਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0410-500-500
8: ਜਾਂ 90-77-97-33
6: ਜਾਂ ਈਮੇਲ info@vyimmigration.com.au।
8: ਯਾਦ ਰੱਖੋ 9077-9733।
6: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
8: हर कदम तुहाडे नाल।
9: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
10: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
11: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
12: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
13: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty. Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available. आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service. Chadston Ford, ready, set, Ford.
14: सोना चाहिदा,
15: भरोसा चाहिदा,
14: quality ते buyback भी चाहिदा, चले आओ Delhi Jewelers, Stockland Point Cook विखे, जिथे buy carat gold, classy silver, dazzling diamonds ate gemstones, custom jewelry thode order te ready, purana sona buyback and exchange turant, cash chahida, gold loan easy and safe, repair, bullion buying, selling sab ek hi jagah te o bhi wajib rate te. Delhi Jewelers, 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.
16: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू
1: की हो यहाँ, इन्हीं टेंशन क्यों लेती हुई है
2: यार? की दसा, मॉर्गेज का काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पैन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
3: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
1: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी तां ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 04935360042।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है। From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshy in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
4: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
0: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लौना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 04900545596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

Kumma vaag fakira, vaag main fakira, vaag main fakira. Sorry for my poor voice, but say thank you to me for my amazing, impeccable song choice. क्या बात है, काश कोई नो रिकॉर्ड कर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरा भी कोई हाल नहीं. खैर, वेलकम बैक, दिस इज कृष्णा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है. आज मैं वह क्या बात है, वैसे मैं आज क्या बात है बोलना ही भूल गया शो द स्टार्टिंग. सो भाई हाँ जी, असी क्या बात है दे नाल जुड़ चुके हैं. आप पहले सैगमेंट के अंदर गलबात की संक कॉस्ट फैलेसी बारे, जिदा मतलब हुंदा कि आप किसी रिलेशनशिप, जगह, लोक, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फलाना टमीका एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्हों सारिया चीज़ों उपर इन्वेस्ट करते रहने हैं क्योंकि असी पहले इन्वेस्ट करते आ रहे थे. सानू पता हुंदा कि इस चीज़ दे अंदर सिर्फ फेलियर है कि जे असी इज्जत चाहते हो सामने हो तो इज्जत नहीं मिलनी, जे असी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते अपने पैसे की तो वह नहीं मिलनी, तो जे आप प्यार शायद भालते पे हैं सामने कि जिस तरह असी दे रहे हो उस तरह का वह भी नहीं मिलना, कि सानू पता वापसी कोई नहीं, फिर भी असी खर्चा करते रहने. क्यों? क्योंकि साढ़े माइंड ने सानू ट्रेन किया कि जे आप एक बारी एक चीज़ करती है नजिठ ली है वह दोबारा दोबारा करते रहना, है ना. तो जी हूँ आप अगे इस सिलसिले को वधावे, तो आप हूँ अगे गलबात यह करा कि भाई ये जी कंसैप्ट है, जोड़ा भी कंसैप्ट लिया साढ़े आह ओहायो च रहन वाले अपना बंदिया ने आर्कस एंड ब्लूमर ने, उन्होंने किस तरह की केस स्टडी की जिस तो उन्होंने पता लगा, है ना. सो मैं थोड़े ना रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दस दिना जिद तो जिस तरह उन्होंने रिसर्च की. पहले का नाम उन्होंने रखिया जी द थिएटर टिकट एक्सपेरीमेंट. जी वो अंदर उन्होंने की किया, उन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल लैके तीन वक्रो वक्रे ग्रुप बनाए. पहले ग्रुप नूं कहा जी कि यह ना अज इस सीज़न दे टिकट सगियां $15 दियां मूवी थिएटर दे, ते इहदे अंदर कह लो तुसी 5 शो वेख सकते हो $15 च, ठीक है. दूसरे नूं $13 दी दित्ती, वो टिकट दस्या कि भाई आ जिहड़ी $13 वाली टिकट आ ना तेरी आह वाली, इहदे अंदर तू सेम उन्ने शो देख सकदा जिन्ना 15 वाले ने कीते, तू खर्च पैसे पर तू सारे वेखने आ. वो कहिंदा ठीक है भाई. फिर बाद चो जो तीसरे की गल हुई तो फिर तीसरा सीगा जी कि ग्रुप सी, ग्रुप सी नू उन्होंने दिता $8, ठीक है. सो पहले नू दिता 15, दूसरे नू 13, तीसरे नू 8, इन्हों इन्ने इन्ने दिया टिकटा वेचिया सेम नंबर ऑफ शोज़ एको थिएटर के अंदर देखने लिए वक्खो वक्री फिल्मा दे. जवाब की आया जी, जवाब यह है कि जिहड़ा ग्रुप ए सी जिन्हें सब तो ज़्यादा महंगी टिकटा खरीदिया उन्होंने ही सब तो ज़्यादा वो शो वेखे क्योंकि देवर लाए कि असी बहुत पैसा खर्चिया, है ना. तो जिहड़ा ग्रुप सी सी उन्होंने उस टाइम उठना सही मनिया जो उन्होंने दसिया कि हूँ ये सारी बोरिंग फिल्मा ने, ये फॉरन लैंग्वेज दिल्मा, असी तो इंग्लिश बोलना जानते हैं, असी नहीं सब टाइटल पढ़ के भाई इटालियन फिल्म वेखनी, है ना. तो वह लोग कहें कि बाय बाय टाटा टेक केयर. इस तो यह साबित हों कि क्योंकि मेरे पैसे वाद लगे मैं शायद अपनी लाइफ दे कीमती घंटे कीमती वक्त बर्बाद कर देव, तो वो सिर्फ इस कारण क्योंकि पैसे वध लगे है. जे उस ही चीज़ में पैसे घट दते हो ना तो शायद मैं इन्नी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो या इज्जत ना देव. इधर एक होर कंसैप्ट आता ओपरचुनिटी कॉस्ट कहें, जो लोग इकोनमिक्स पढ़े हुए जो लोग आई एम प्रीटी मच श्योर इफ दे आर वर्किंग इन रियल एस्टेट और मॉर्गेज ब्रोकर ने या फिर इन इंश्योरेंस दे वुड बी यूजिंग दैट टर्म अलॉट, क्योंकि वो पॉइंट ही यह हों कि किसी चीज़ को छड़न की कॉस्ट कई बार बैटर होंगी है नुकसान नालों. कि मैनू पता कि मैं करता रहांगा तो 10 रुपये का नुकसान है, पर जे मैं नहीं करांगा तो शायद नुकसान जड़ा वो घट है, तो बैटर यह है कि मैं घट नुकसान चक लवा. नुकसान तो होना ही है दोनों केसिस. सो ये चीज़ा माइंड च रखनिया चाहिए, सही कि नहीं. अच्छा फिर दूसरे पास जो तुम देख लो उन्होंने एक होर कढ़िया एक्सपेरीमेंट, यह है जी स्टडी 2, यदा नाम यह है जी द हाफ ईटन मील स्टडी, ठीक है. रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने एक्सपेंसिव खाना दिता, ठीक है. तो एक नू कहता जी खाना 2000 का, एक नू कहता जी खाना 200 का, ठीक है. सेम फूड एंड इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड फूड, पुअर टेस्टिंग फूड सिगा,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲੰਘਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਰੋਏ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ $2000 ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੂਡ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਊਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 200 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ।

हाँ जी, मैं कृष्णा भारद्वाज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। कैसे हैं आप? लगता है आप काफ़ी समय से मुझे मिस कर रहे होंगे। दैट वॉज अ वेरी पुअर जोक गाइस, इट्स ऑन मी, मेरी गलती। तो असी आ गए जी वापस, और फाइनल फाइनल फाइनल राउंड हूँ अपनी गलबात का एंड होने लगा, गलबात खत्म होने लगी है। थोड़े तो मेरे विछोड़े के थोड़ा जहा समा रह गया, तो आप हुण इन्नू गल नूं अगे वधांदे होए खत्म करिए इसनों, इस दी डेस्टिनी तक, सॉरी डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनी भी वैसे सही वर्ड से पर चलो जो है सो है, डेस्टिनेशन तक लैके चलिए। तो जी हुण यह है कि हाउ टू को ओवरकम दिस, ये अंदर भी जी वो प्रधान हो रही दस के गए ने, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल है। एंड अगेन जो तुम हजे तक मेरे नाल बने पे हो थानू पता है की करना, बट स्टिल मैं दस के जाऊँगा। सो अपने कॉपी पेन फिर तो तैयार रखो क्योंकि हुणे ही थोड़े कोल इदां दे जवाब आन लगे है, ठीक है जी। सो टू ओवरकम ए वाली फीलिंग, ए टेंडेंसी हटाने लिए थोनों एक डिसरप्शन लगानी पैनी है अपने अंदर, है ना, एक डिसरप्टर होना चाहिए जिस करके तुसी ये काम करना हट जाओ, तुसी बार बार नुकसान वालू खुद जाना रोक लो खुद, है ना। सो चार एक्सरसाइजेज दसियां जी उन्होंने, ठीक है जी। पहली एक्सरसाइज है जी फ्यूचर फोकस्ड थिंकिंग, सिंपल है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਜੋ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। Ask yourself because you need to be in the present, right? So, ek ta A ho gaya. Phir dusra ji ki Bashir Badr sahab ne kya hai ki jo guzar gayi so baat gayi. A second bhi unhone nahi kya, par inna ne basically hi samjhaya ki jo chala gaya, chala gaya. Jo bhi invest kar chukke ho, oh ja chukka. Nobody owe you. Je tusi kise naal change ho, je tusi kise da kuch kita, te ehe thuanu lagda morally कि थानू वह चीज़ वापस आनी चाहिए है, पर कोई भी इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं चकता, कोई भी कित भी रिटन टैक्सट नहीं है कि कोई थोड़े नाल उदा ही व्यवहार करे जिदा तुम उन्हों करते हो। तो सेम गोज विद मनी, जे थानू लगता कि अज वह चीज़ इन्वेस्टमेंट मैं जो करता पाया, मैं कभी ना कभी पैसा वापस मुड़ के आऊगा, तो इदा नहीं होंगे। तुम जिन्ने मर्जी पैसे अपने सुटने सुट लो, खराब करने कर लो, पर इदा कभी चीज़ा ठीक नहीं होंगे। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਪਤਾ ਬੈਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵਿਚਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਜ਼ ਮੱਚ ਬੈਟਰ। ਐਂਡ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅਗੇਨ ਫਿਊਚਰ ਫੋਕਸਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ 5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਐਂਡ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਵਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਆਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਵਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ ਸੰਕ ਕੋਸਟ ਫੈਲੇਸੀ। ਤਾਲੀਆਂ।
चलो इन्नी जी गलबात ही सी जी, थैंक यू सारी गलबात सुनने लिए। एंड जान तो पहला यह हो सकता कल कंसैप्ट बदली जान, पर जदों भी तुसी कदी मेरे नाल बैठे होंगे मेरिया गल्लां बातां सुन रहे होंगे तो मैं चाहना कि मैं अपने भैन भरावां नूं वधिया वधिया गल्लां सुना के उन्हां नूं कोई अच्छा जिहा किस्सा कहानी भी जांदा होया सुना के जावां, है ना। सो लास्ट टाइम आपां गल कीती सी कि हंगामा क्यों है बरपा, जिहड़ी गज़ल उह कित्थों आई, है ना। अज असीं गल करांगे हिसाब किताब दी, ठीक है जी, कि इस दुनिया का लेखा जोखा इत्थे दा ही आ। रीयल स्टोरी जावेद अख्तर साहब नाल वापरी हुई उन्हां दी ही जुबानी, ठीक है। सो ये जिहड़ी गलबात है ये कुछ साल पुरानी है, किन्ने साल पुरानी है मैं दसदा जी, किन्ने साल पुरानी है कहानी है जी 1960s या 50s दी। जावेद अख्तर साहब कहिंदे कि मैं तद ना 20-21 सालों का सीगा, नवां नवां मैं इंडस्ट्री च आया, मैनू काम मिले ना, उपरों गुरबत माशाला बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गरीबी तो काफ़ी ज़्यादा गुरबत दे नाल बैठे हुए एक अनएम्पलॉयड आदमी का क्या ही हो सकता, वह भी बगाने शहर के अंदर, बॉम्बे वर्गे बगाने शहर के अंदर। तो होया ये कि जावेद अख्तर साहब ने थोड़ा जहा ना हौसला करके ये ठानी कि मैं किसी को जाके ना हेल्प मांगदा। वह साहिर लुधियानवी साहब को गए। साहिर लुधियानवी साहब उस टाइम के सब तो मकबूल, उस टाइम की वैसे आज दे भी समय दे सब तो मकबूल राइटर सी, ठीक है जी। वो गए कहते कि जनाब मैं आपको तो पता है काम वाम है नहीं है और मुझे पैसों की कुछ तंगी भी है, तो हो सके तो मुझे कहीं पर काम वगैरह हो सके तो दिलवा दें, कहीं रेफरेंस वगैरह दिलवा दें, सिफारिश वगैरह लगवा दें, मैं लिखता तो आपको पता है अच्छा हूँ। तो जावेद साहब दसते हैं कि अपने अंदाज़ के अंदर अपने आप को यारा दोस्तों के बीच बैठे साहिर साहब फकीर कहते सके खुद को, है ना। सो साहिर साहब अखा नीवियां करके मूँह थोड़ा जहा जावेद साहब तो परे करके कहते कि नौजवान काम वाम का तो वैसे है कि पता नहीं है कब है कब नहीं है, पर फकीर देखता है कि क्या करेगा, कोशिश करेंगे तुम्हें काम वाम दिलवाने का, पर ना मैंने मेज़ पर कुछ पैसे रखे हैं, तुम ऐसा करो ये पैसे अपने पास अभी के लिए रख लो, जब तुम्हारे पास हो तब वापस दे देना। जावेद अख्तर साहब थोड़ा हिचकिचाते हैं तो फिर तो इंसिस्ट करते हैं साहिर साहब कि कोई नहीं यार पैसे ले ला, कोई चक्कर वाली गल नहीं है कि ये पैसे जो तू लै ही जाएगा तो मतलब तेरा कोई फायदा ही होएगा, है ना। हिचकिचाते हुए जावेद साहब पैसे चकते हैं। अमाउंट कितनी है जी 200 रुपये। 200 रुपये की अमाउंट अपनी जेब च पा के जावेद साहब निकलते हैं दोबारा वापस बंबई की सड़कों स्ट्रगल करने लिए। जावेद साहब बाद चो हल्का जहा काम मिलता, फिर सलीम जावेद की जोड़ी बनती है, काम भी बहुत आता, मकबूलीत भी बहुत मिलती, पैसा भी बहुत आता, बहुत ज़्यादा पैसा आने तो बाद भी हुंदा पता की है, हुंदा यह है कि जावेद साहब कभी भी ना साहिर लुधियानवी साहब उन्होंने पैसे नहीं मोड़ते, वो मिलते रहेंगे है, उन्हों का रिश्ता बहुत गूढ़ा हो जाता, एक मेंटर ते स्टूडेंट वर्गा रिश्ता उन्होंने दोनों का सगा, पर वो हमेशा ना किसी महफिल च भी बैठे होंगे ना तो उन्होंने इस तरह मजाक कर देंगे सके जावेद अख्तर साहब साहिर साहब न कि साहिर साहब मेरे पास अभी भी आपके 200 रुपये हैं पर मैं आपको वापस नहीं देने लगा। तो अगों तो अदों तो अगों उन्होंने कह देना अपना साहिर साहब ने कि भाई मैंने कौन सा मांगे कभी है कुछ नहीं। अच्छा महफिल च बैठे लोग भी ना कि भाई कन्फ्यूज़ होंगे कि गल करी जाते पे 150-200 रुपये की, है ना। पर साहिर साहब का यह वड्डापन से बड़प्पन से कि उन्होंने कभी इस गल का जिक्र नहीं किया कि जावेद के बुरे दिनों के अंदर उन्होंने उन्होंने आर्थिक हेल्प की सी। कुछ साल होर बीतते हैं, साहिर साहब अपने फैमिली डॉक्टर के दोस्त के घर गए होंगे, डॉक्टर कपूर उन्होंने घर ही उन्होंने अटैक आ जाता। जो अटैक आता तो वह डॉक्टर कपूर कोशिश तो करते उन्होंने CPR वगैरह दे के रिवाइव करन दी, पर वो असफल होंगे है। साहिर साहब की फौतगी हो जाती है, बॉडी लियाई जाती है साहिर साहब के घर, उत्थे जावेद अख्तर तो होर कुछ उन्होंने करीबी लोग पहुँचते है। साहिर साहब दियाँ दो ही भैन सगिया, वो दोनों पहुँचती हैं। फिर काफ़ी टाइम तक जावेद अख्तर साहब कहें कि उन्होंने ना हथ जिस तरह बंद बंद सके, घुटे हुए सके,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਉਨਕੇ ਜਬ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਤੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਹੱਥ ਸੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਥ ਇਕਦਮ ਠੰਡਾ ਸੰਨ ਪੜਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਆਉਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਖ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਝਾੜਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਵੇਦ ਜਾਵੇਦ, ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਜਾਵੇਦ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕੋਮਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੋ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿਆ? ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਬਤਾਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਰੁਪਏ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਕਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੂੰ।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: चलदी दा नाम गड्डी, हां ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हा को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ जी रेडियो।
1: की होया, इन्नी टेंशन क्यों लेती हुई है?
5: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
5: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
6: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
8: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
9: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
10: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-2522।
11: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
12: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालत च।
13: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
14: मैं उत्थों भी मुड़ गया जिथों कोई नहीं मुड़ गया।
11: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
13: Hun vekhna na bhullyo 15 Mai to tuhade nedle cinema ghar vich Shera।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: पावे तुसी कोई कामे जां रोजगार दाता हो, तुहानू सुरक्षा दा अधिकार है अते काम नू सुरक्षित रखण दी जिम्मेवारी है। वर्क सेफ तुहानू अपने अधिकारां अते जिम्मेवारियां नू समझण विच सहायता करेगा, ता जो तुसी काम दी जगह ते सुरक्षा बारे गल कर सको। काम दी जगह ते सुरक्षा साडी आम भाषा है। अनुवाद कीती जानकारी लई worksafe.vic.gov.au/punjabi ते जाओ। अपनी भाषा विच किसे नाल गल करन लई सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 8 बजे तो शाम 5:30 बजे दे विचकार 1-3-1-4-5-0 ते फोन करो।
3: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो।
5: ऊं तां इदां वीर कान्ने मुंडा कैम लगदा नहीं जदों जट रेडी हुंदा थोड़ा।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की होया
1: एथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवाई इमीग्रेशन नु जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
3: हाँ जी रेडियो।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
3: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
2: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते
4: हां जी

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

खान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हासो कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सपावा बिन पाने के नाए करी जेती सृष्ट उफाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रहाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस्त नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तरतवल आकाश सुनै दीप लोप पाताल सुनै पो न सके काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर बर्मा इंद सुनै मुख सलाहन मंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ का

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित छपे छंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर में नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्द करता अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता।

हैं, थलय हैं, अभीत हैं, अभय हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अवेश हैं, प्रियांगपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तुं निनाथे नमस्तुं परमाथे नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अभंजे नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्वतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वोत्कृष्टंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मात्र मान देव अभेद आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्तियों सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेख अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत मितपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां वर्णांडिय अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज भेषय के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप।

के अनुभव अनुपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रम बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम है सली खुदमदाम है गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमाम रजूअल निदान हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशा रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमीक उमा है करीमल कुमाल है गजुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो भूत है के अमितो प्रसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अभंग है मद भार छंद तो प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत
अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजानवा एक सदा ओंकार आदि कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अतटीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जाके करण है मनमानी है जगजानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजभाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्म नायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्मा में आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अभर्मं अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामं बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीमं रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा

0: नहात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सब तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिय सब बैरन को आज संगरिय पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तज कीनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा है बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा सुरु सुजंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखु बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुखद है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रक्षा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

तैसार न जाने तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनू अंत दिन हर

जैसी अगन उदम है तैसी वार माया, माया अगन सब को जई करता है खेल लचाया, जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया, कह नानक

संत उद्धरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है? हमारी डेली लाइफ में अध्यात्म के सिद्धांतों को शामिल करने की कोशिश में आपका ये दास लगा रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब कोई हमारी सच्चे दिल से तारीफ करता है तो मन खुश हो जाता है। एक छोटा सा अच्छा शब्द पूरे दिन को सुंदर बना देता है। किंतु क्या हर प्रशंसा अच्छी होती है? क्या शास्त्र भी तारीफ करने को सही मानते हैं, या फिर यह अहंकार बढ़ाने वाली चीज है? जानते हैं आज के पुण्य दर्शन में। इस छोटे से अंतराल के बाद आप सुनते रहिए पुण्य दर्शन।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596, गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ, आओ थोड़ा कोई हल करिए।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ। हमारे शास्त्र प्रशंसा विषय पर बहुत सुंदर संतुलित शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति हर जगह दोष खोजता है उसका मन भी दोषों से भर जाता है, किंतु जो व्यक्ति गुणों को देखकर सीख जाता है उसका हृदय भी सुंदर बन जाता है। हमें शहद की मधुमक्खी बनना चाहिए, ना कि गंदगी पर बैठने वाली मक्खी। सब जानते हैं मधुमक्खी को केवल फूलों में उनका रस दिखता है, उसके कांटे नहीं, जिसे वो चूस कर शहद बना देती है। किंतु दूसरी ओर चाहे साफ सुथरा शरीर कितना भी साफ सुथरा हो, शरीर के एक भाग में अगर जख्म है ना, तो मक्खी वहीं जाकर बैठेगी गंदगी पर। इस तरह की प्रवृत्ति हमारे भीतर भी बड़ी जल्दी पनप जाती है। हर समय दूसरों की कमियां निकालना, कोई काम करे तो उसे बोलना कि इसमें क्या खास है, कोई कीर्तन करे तो तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं है। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारे मन में कटुता भरने लगती है और बाद में ये आदत बन जाती है। और मजे की बात यह है कि स्वयं को सच्चा साबित करने के लिए एक लाइन हर कोई बोल रहा है, अपने आप वकील बन जाता है। क्या है वो लाइन? मैं तो सच बोलता हूं, किसी को बुरा लगे या अच्छा। किंतु ऐसा नहीं है मित्रों, आपके द्वारा सामने वाले की गई सराहना या प्रशंसा ना जाने उसमें कितना जोश भर दे, उसे कुछ नया करने की शक्ति प्रदान कर दे। कैसे करें ये गुण का विकास, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आप रोज खाना तो खाते हैं घर पर, उसे आपकी मम्मी या पत्नी बनाती होगी। खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, वो अच्छा या बहुत अच्छा होता है। क्या आपने खाने की थाली जब आपके सामने टेबल पर आती है तो उसे गौर से देखा है? उसमें दाल, सब्जी, रायता, अचार, मीठा, गरम चपाती, चावल, सब कुछ मिलता है, और ये देखकर आपको कुछ महसूस होता है? उसे गौर से देखिए, कितनी कड़ी मेहनत है उसमें, गर्मी में किचन की तपिश है उसमें, आपको स्वाद परोसने के लिए बरसों का अभ्यास उस थाली में दिखता है। कभी नमक कम है या क्या बनाया है, मुझे नहीं खाना बोलकर हम बनाने वाले का दिल क्षण में तोड़ देते हैं, किंतु खाना खाते समय अगर आप एक शब्द मुस्कुराकर बोल देना, वाह क्या खाना बना है आज, देखना बनाने वाले के चेहरे पर वो खुशी और उत्साह आपको साफ दिखाई देगा, और नेक्स्ट टाइम और स्वादिष्ट भोजन बनाकर आपकी थाली में परोसा जाएगा। केवल एक शब्द। प्रशंसा करते समय शास्त्र एक चेतावनी भी देते हैं, अगर प्रशंसा केवल स्वार्थ के लिए हो, अगर किसी को खुश करके अपना काम निकलाना हो या किसी के अहंकार को बढ़ाना हो, तो वह प्रशंसा नहीं चापलूसी बन जाती है। सच्ची प्रशंसा वह है जो व्यक्ति को भगवान के और करीब लेकर जाए, जो उसे विनम्र बनाए, घमंडी नहीं। सोशल मीडिया हो, परिवार हो, वर्क प्लेस हो, एक गलती पर 100 बातें सुनने को मिल जाती हैं, किंतु किसी की अच्छाई देखकर दिल से कहना आपने बहुत अच्छा किया, यह बहुत कम लोग कर पाते हैं। कभी कभी आपके 2 मीठे शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकते हैं। किसी की सेवा की सराहना किसी बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, किसी थके हुए व्यक्ति को नई शक्ति दे सकते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, प्रशंसा करो किंतु सच्चाई से, ईमानदारी से, तारीफ करो किंतु विनम्रता से, और सबसे महत्वपूर्ण, हर अच्छाई के पीछे भगवान की कृपा को देखिए, क्योंकि जब प्रशंसा में भगवान का स्मरण जुड़ जाता है, तब वह केवल शब्द नहीं रहते, वह एक आशीर्वाद बन जाते हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

कारपेट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802552 ते।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: कि दे थिंक इट्स अ वेरी लाउजी स्कीम या फिर
1: नो इट
0: टू मच है.
1: इजेंट, नो इट इजेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी स्कीम हैज़ गॉट अ राइट इंटेंशन बिहाइंड इट, राइट. वी हैड दोज सोलर थिंग्स गो स्कीमा चलियाँ, वो थोड़ी इंसुलेशन की स्कीम चली, मेनी पीपल बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, बट दे वर सम बैड एप्पल्स दैट क्रिएटेड सम रकस. वो हमेशा होएगा हर स्कीम के नाल. आई हैव वर्कड विद, सो मेरी जी दूजी कंपनी आई टी दी है, आई वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट. आई हैव सीन दैम हैव द राइट इंटेंशन टू डू इट, बट एट द डे एंड तुम ये बोल रहे हो काम तो ह्यूमन्स ने करना है. हर तरह का बंदा है, हर तरह की बंदी की अपनी इंटरप्रिटेशन है. मैं थानू क्या मैनू कमरा बनाना है, करेक्ट. मेरे दिमाग दे विच है शीशे का कमरा, थले लेदर दे कारपेट लगे हुए ने, बड़ी प्यारी सीट है. सामने वाले ने सुनिया अच्छा इट चीने दे राल कमरा, थले मैं फ्लोरिंग सीमेंट दी पा देना. एवरीवन्स इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट ऑफ द वर्क यू आर आस्किंग देम टू डू. जे तुसी वेलवेट भी कह लोगे, वेलवेट भी 50 तरह दी आंदे. यू हैव टू बी वेरी मिनिस्क्यूल इन योर रिक्वायरमेंट्स कि तुहानू चाहिदा की है. When a government is introducing its schemes, minister ने क्या मेरी intention ये है कि जेड़े disabled हैं उन्हें दी help चाहिए है. अगे उधर सलाहकार ने एक scheme compromise मतलब बनाती, department नू देती run करने ली. हुन तुसी already Chinese whispers दे third stage थे हो. उस तो बाद उन्होंने छोटे छोटे department बनाए, उस scheme नू roll out करता. It will have its flaws. Flaw होना गलत नहीं है कृष्णा. Flaw तो ना सीख के fix ना करना गलती है. They're fixing it.
0: And jehde proposed changes ne, you think they will do
1: better,
0: I
1: think right? They will do. I really think. Because a disabled nu tang karan li nahi ban rahe. Eh unhan nu protect karan li ban rahe ne. Tusi dasso mainu, je main paperwork ch likhna hai mainu ki main ki service ditti, ede naal onu ki fayda hoya. Ode vich jehda tuhada participant onu ki nuksan hai. Kam mera vadhya, par meri job da hissa hai.
0: जी
1: तुसी अपने दूजे काम कर दो. बॉस कहंदा कि कल तो तुनू चार लाइना फालतू लिखनी पेगी अपनी रिपोर्ट विच, लिखोगे कि पता तनखा चाहिदी है.
0: जी जी जी हां,
1: कल्पोगे पर लिखोगे. यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. डिसेबिलिटी इज अ रियल थिंग, मेंटल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो रियल. सो आर जॉब एज अ सोसाइटी, फॉरगेट अबाउट मेरी कंपनी नहीं है, एज अ सोसाइटी आर जॉब इज टू डू द राइट थिंग बाय देम. जे असी नहीं ठीक करांगे, असी किदे कोलो एक्सपेक्ट करांगे? सो द स्कीम आई हैव सीन पीपल बेनिफिट कृष्णा, इट्स अ ब्यूटीफुल स्कीम. बस वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जेडे ओदे कुंडी दरवाजे ने ओ टाइट रहन, ते लूप होल्स ना हो, ते जे ओ नहीं होंगे ना, पीपल विल बेनिफिट आउट ऑफ इट.
0: एंड व्हाट डू यू थिंक के जेडे चेंजेस वगैरह जो फिलहाल प्रपोजल स्टेज ते ने, राइट, या फिर कि चाइनीज विस्पर,
1: न्यू वर्ड,
0: हर रोज एक चीज नहीं सीखनी चाहिए गाइस, चाइनीज विस्पर इज द न्यू वर्ड. ते एक ही लादा कदोक वी वुड बी सीइंग देम बीइंग इंप्लीमेंटेड
1: और प्रपोज्ड चेंजेस, दे इंटेंड टू रोल इट फुली बाय 2027.
0: अच्छा.
1: बट जेडे गवर्नेंस चेंजेस ने आई दे आर सेइंग एंड ऑफ 2026, 2025-26 ते जो तुम्हारे पेपर वर्क वगैरह है जून हुन खत्म हो रहे, उस तो न्यू फाइनेंशियल ईयर तो वील ऑल स्टार्ट गेटिंग दीज ईमेल्स फ्रॉम इंडिया एज टू से दिस इज द एक्सपेक्टेशन. उन्होंने ऐस करके ऑलरेडी सानू आगाह करना शुरू करता है कि मेक दीज चेंजेस एज
0: ट्रैक
1: ते लियानी. एज एज अ प्रोवाइडर आई ऑलरेडी जेडे असी फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट फॉर्म करते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड एडिशंस टू इट. जेड़ा मेरा सपोर्ट वर्कर अपना फॉर्म फिल करता है, जेड़ा वो जानता है सपोर्ट करने लिए, उदे विच ऑलरेडी दो पैराग्राफ्स एक्स्ट्रा ने उन्होंने. So we are kind of getting ready for it. Ki last din te surprise na hoye. So they are giving us enough support to say ki eh changes.
0: Matlab jada hona ha 26-27 da financial year jinnu apa keh rahe jo ki July to June hunda ha na. Ode andar maybe these things will get.
1: And fully functional, I think 2028 is when you see a fully functional new changes format with no buffer.
0: पर एदे अंदर ए है मेरे हिसाब नाल कि देयर इज नथिंग लाइक जो क्योंकि ज्यादातर ए सुनन नु मिल जांदा किसी भी स्कीम नू रिलेटेड जो तो हल्की जी इदारी हवा बन जाए कि भाई गलत बहुत काम हो रहा है, उल्टा सीधा काम हो रहा है, तो यह होता कि गवर्नमेंट हाथ खिंच लेंदी है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग वगैरह. इदा का कुछ है कि उधर
1: लुक, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ यू हैव वी 2 लाख लोगों की असी गल कर रहे हैं,
0: एंड वो भी कल्ला सिर्फ विक्टोरिया के अंदर.
1: एंड यू टेल मी इफ दैट स्कीम इज नॉट देयर, उन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? डज द गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू डू दैट? दे डोंट. But they need right people to do it. That's what it is. Ona di intention jehda shor pe hai is not ki utthe paise bacha len. Saadi agge aan wali peediyan de layi paise bachan the intention behind it.